0: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल एट ऑल प्रोटेक्ट।
3: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
0: From Acocks Green to Small Heath, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands, sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.
4: Chori chori chupke se aake meri aankhon mein sama ja.

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावी।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, तगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी हो।

वाजिब तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहब नानक रहन जा।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस, लख लख

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए, जाए।

0: Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 7:30 PM on Colours. And watch it anytime on Jio Hotstar.
1: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination Kanish Idols अब available हैं सभी Falcon Stores पर. Onam संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon Snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds सिर्फ £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg सिर्फ £29.96. S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99 piece से शुरू. और हर्जमैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99.
2: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE54UN.
3: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties The Buy has something for everyone.
4: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11,
4: 11. Call the Danu Properties London office today on 02 03 963.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, हप, हप, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: pasear.
1: Good morning. स्वागत है संगीत प्रेमियों का म्यूजिकल वर्ल्ड में।

0: शुक्रवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 11 तारीख, ऐसी तारीख भाई जिसे भुलाना आने वाले युगों तक नामुमकिन है। 11 सितंबर जिसे अमेरिका में 9/11 कह के बुलाया जाता है। 9/11 आतंक के साथ जुड़ गया ये दिन, ये इतिहास में लिखा गया कलंक के साथ 9/11। बड़ी भयानक यादें हैं बहनों भाइयों इस दिन के साथ, और मुझे याद है कैसी इस खबर को हमने सुना था, स्वीकार किया था, फिर देखा था। बहुत सारे लोगों के जीवन को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को, कई नीतियों को, विदेश नीतियों को, पॉलिसीज को इसने प्रभावित किया। आगे चल करके बात करेंगे, फिलहाल तो भाई संगीत से शुरुआत करेंगे। तुमको चाहे नजर एक नजर देखना, देखना तुझको छुपकर मगर देखना, ठान ले जब जबी को झुकाना है तो, मस्तक को झुकाना है तो अपने महबूब का सिर्फ दर देखना। मुझ पे हंसने से पहले जरा जान लो, होगा तुम पर भी एक दिन असर देखना। हम किसी भी बहाने उधर जाएंगे, तुम किसी भी बहाने इधर देखना।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Refreshing Asian hits across the Leica Radio network.
0: Tujhko chahe nazar ek nazar dekhna, dekhna tujhko chup kar magar dekhna.

0: कुछ बाकी नहीं रहा, अब क्या रह गया बाकी। वेल दिस वॉज फ्रॉम हिम्मत वाला फिल्म। और भाई गाने वाली आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले और बप्पी लहरी का भी योगदान था भाई गीत में। और इससे पहले जिससे ये प्रोग्राम शुरू हुआ, दैट सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म रंग, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। कैसे आए भाई ये दो गीत बैक टू बैक सुनवा करके हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। आज 11 सितंबर है, वो दिन भाई जिसकी यादें जो है वो अब भी जख्म बन करके कभी कभी हरी हो जाती हैं जब कोई उसी तरह की घटना कहीं आसपास घटती है या हमें सुनाई पड़ती है। और आज तो भाई काफी कार्यक्रम होंगे उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप जो इस हादसे का शिकार हुए। 3,000 लोग एक झटके में कैसे जान गंवा बैठती हैं। और मैं सोचता हूं उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, कितनी नफरत होगी उनके दिलों में, कैसे लोग होंगे वो, सोच सोच करके जी घबराता है। मुझे याद है मैं उस दिन प्रोडक्शन स्टूडियो में काम कर रहा था जब मुझे यह खबर मिली और मैंने स्टूडियो में ही टीवी ऑन किया और देखा तो साहब वो भयंकर दृश्य। खैर आगे चल करके जिक्र करेंगे इस बात का कि क्यों ऐसा लोग करते हैं, क्यों ऐसा होता है, ये कैसी दुनिया है। राइट, अब तो आपको हम बताने चले हैं पाउंड का रेट भारतीय करेंसी में। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. Today they are giving 128.9 Indian rupees for 1 pound. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. 128.90 rupees ka rate chal raha hai. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Like a radio.
2: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: 4 stars, 1 stage, 1 date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 p.m. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping ka perfect destination. Kanish Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon Snacks 300 grams ki full range sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds sirf £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams sirf £1.99 each ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg sirf £29.96. S Motiram Namkeen ab sirf 99p se shuru. Or Herdsman Butter Ghee 20 kg sir 10.99.
5: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Sale Leicester LE54UN.
6: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone. 11, 11.
7: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11,
7: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
9: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11. weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything, from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines, and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan. Locate, design, manage, cater.
10: London, get ready for an unforgettable night.
11: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
10: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
11: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
10: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
11: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
10: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
12: I happen to happy valley feeling like a Diwali.
10: It's back and it's bigger.
13: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
10: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
13: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
10: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
14: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
15: आपका नया स्टेशन Leica Radio Ghazals बहुत जल्द आ रहा है.
16: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और भाई ये गीत अगला जो हम सुनवाने जा रहे हैं, इसे हम मीनल की मम्मी के नाम करने जा रहे हैं. मीनल कहती है कि आज मम्मी का बर्थडे है. गाना लगा दो, आएगा आने वाला आएगा. पुराना गाना नहीं आएगा, बहुत पुराना हो गया. और कहती भैया वो लगा दो, कौन सा, तुम न जाने किस जहां में खो गए. सैड सॉन्ग मीनल. बर्थडे मम्मी का, हैप्पी वाला बर्थडे मनाना है. अगर किसी ने आना है तो भाई दिन के उजाले में आए, गाता बजाता झूमता नाचता आए और मम्मी उसको सुन करके खुश हो जाए. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू मम्मी जी. मीनल की मम्मी, नाम नहीं लिखा आपने.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
3: और बहन भाइयों, 10:30 बजा चाहते हैं, समय हो गया है समाचारों का। और भाई, समाचारों में तो छाया हुआ है ब्रिक्स, भारत की राजधानी दिल्ली में नेताओं का जमावड़ा। और भाई, उस पर लगी है नजरें पूरे विश्व की, क्या होने जा रहा है, खासकर अमेरिका की, कि अमेरिका के खिलाफ या डॉलर के खिलाफ या फिर भाई उसके गठबंधन के खिलाफ ये देश इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, एक ही मंच पर शी जिनपिंग और पुतिन और साहब मोदी और साउथ अफ्रीका और पेजिशकान भी वहां पहुंच रहे हैं, क्या हो रहा है, लेट्स फाइंड आउट। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए।

आज शुक्रवार को पहुंच गए हैं, कल से सम्मेलन शुरू हो रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन 12 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले आज उनकी पुतिन से मुलाकात होने जा रही है। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से जारी सूचना के मुताबिक उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात शुरू हो चुकी होगी अब तक तो, क्योंकि दोपहर 3:30 बजे का समय है जो वहां बच चुके हैं। पुतिन के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान से भी बातचीत करेंगे। उनकी ये मुलाकात वहां के समय के अनुसार 6:30 बजे होगी। ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। आप ब्रिक्स से तो समझ ही गए होंगे, पहले भाई शुरू में तो 4 देश इकट्ठे हुए थे, फिर 5 और अब कई देश इसमें शामिल हो चुके हैं। भारत से आने वाली अन्य खबरों में मायावती का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तंज कसा गया है। कहा कि नीला रंग अपनाने से जातिवादी सोच नहीं बदलेगी इनकी। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि नीला रंग अपनाने से अपोजिशन पार्टियों की जातिवादी सोच नहीं बदलने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के लोग नीला रंग अपनाना चाहते हैं तो वो अपने गमछे और स्टेज का रंग नीला करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा करने से गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े और दूसरे उपेक्षित वर्ग के लोगों के प्रति उनकी जो संकीर्ण सोच है, तंग सोच है, वो नहीं बदलेगी। अमेरिका की से एक खबर आई है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ अप्रवासियों के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए नौकरी जाने के बाद अमेरिका में रुककर नई नौकरी या नए स्पॉन्सर की तलाश करने के लिए मिलने वाली 60 दिन की जो छूट है, रियायत है, वो खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। इनमें H-1B वीजा काम करने वाले कुशल कर्मचारी भी शामिल हैं जो इस वीजे पर काम करते हैं। गुरुवार को यानी कल ऑनलाइन जारी एक सरकारी नोटिस में ये जानकारी दी गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी मिड टर्म चुनावों पर जंग के असर के बावजूद उन्हें ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने का कोई पछतावा नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव पर पड़ने वाले असर को देखते हुए उन्हें ईरान के खिलाफ जंग पर अफसोस है, तो ट्रंप ने कहा, मैं पछतावा शब्द में विश्वास ही नहीं करता, आप हमेशा खुद से थोड़ा सवाल कर सकते हैं। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने कल मिस्टर सिंह से अमेरिका से स्वेच्छा से चले जाने की अपील करने वाला विज्ञापन हटा लिया है। एक भाई एडवर्टाइजमेंट थी बनी इस तरह से, जिसमें कहा गया था कि मिस्टर सिंह वापस जाओ। अब भाई मिस्टर सिंह से उनका इशारा उन टैक्सी ड्राइवर्स के तरफ था जो बड़े बड़े शहरों में वहां टैक्सी चलाते हैं। भारतीय अमेरिकी संगठनों और डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे नस्लवादी प्रोपेगेंडा बताते हुए इसको खूब क्रिटिसाइज किया। पता चला है कि कुछ बिना लाइसेंस वाले कमर्शियल ड्राइवरों के खिलाफ अपने अभियान के तहत एक्स पर AI से बनाई गई यह तस्वीर इस्तेमाल की गई थी। इसमें दाढ़ी वाले एक सांवले रंग के व्यक्ति को दिखाया गया था और लिखा था कि हमारी सड़कों से चले जाओ, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता मिस्टर सिंह। इस पर साहब जो बवाल हुआ, उसके बाद पता चला है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम और सांसद राजा कृष्णमूर्ति समेत डेमोक्रेटिक नेताओं ने भी इसका विरोध किया और इसे वापस ले लिया गया, हटा लिया गया है। हांगकांग में चीन में हुए 1989 के 10 अनमन चौक प्रदर्शनों की वर्षगांठ पर एक समारोह आयोजित करने के सिलसिले में 3 कार्यकर्ताओं को 7 साल तक की सजा सुनाई गई है। 2 अभियुक्तों, 69 वर्षीय ली चुकयान और 41 साल चाउ हांग तुंग को पिछले महीने शहर के कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत दूसरों को तख्ता पलट के लिए उकसाने का कसूरवार ठहराया गया। नई दिल्ली में कल 12 और परसों 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन से पहले दुनिया भर के नेताओं का दिल्ली आना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन से पहले एक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगले कुछ दिनों में दुनिया भर के नेता ब्रिक्स समिति के लिए जुटेंगे। पूरा विश्वास है कि सम्मेलन में वर्ल्ड वेलफेयर के लिए विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर पॉजिटिव और सार्थक बातचीत होगी। उन्होंने संस्कृत के एक श्लोक का भी जिक्र किया जिसका मतलब है कि मनुष्य को सदैव सज्जनों के साथ रहना और उनकी संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि परस्पर बातचीत
और दोस्ताना रिश्ते शांति और सहयोग

0: को दृढ़ करते हैं। पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के प्रोटेस्टर्स ने विद्रोहियों के कब्जे वाले बुकाबू शहर में दो स्कूलों में लगी आग से बचने की कोशिश के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 24 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। बताया गया है कि आग में कुछ एडल्ट्स की भी मौत हुई है। घनी आबादी वाले कुदूत कम्युनिटी में मृतकों की संख्या और बढ़ने की भी आशंका है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक निप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र के पावलरहाद शहर में एक शॉपिंग मॉल पर रूसी ड्रोन के हमले में 5 लोग मर गए हैं, मौत हो गई है उनकी, और 67 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के होम मिनिस्टर इवान हविस्की ने कहा कि दिन में हुई इस हमले की चपेट में दुकानें और गाड़ियां भी आई हैं। T20 महिला एशिया कप क्रिकेट के इस महामुकाबले में बांग्लादेश को हराकर भारत फाइनल में एंटर कर गया है। T20 महिला एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया। फाइनल में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं, उससे वो काफी खुश हैं और संतुष्ट हैं। और भाई, आगे क्रिकेट की कुछ और भी जानकारी है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच चल रहे मैच में पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 52 रन बनाए हैं, उसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अभी भी उसे चेज करने हैं, 268 रनों से पीछे हैं वो पहली इनिंग के स्कोर के अनुसार इंग्लैंड के। ये थे समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

गीत संगीत सुनवाते हुए भाई आपको कुछ बातें याद दिलाते चले। एक तो लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड टीम अप फॉर ए स्पेशल प्रमोशनल इवेंट फॉर सिधायू एट क्वालिटी फूड्स हेज एंड हाउंसलो। हमारे प्रेजेंटर पहुंच रहे हैं वहां, जॉइन रूबी रजा, काजल एंड सैंडी शाह, दिस सैटरडे यानी टुमोरो, एंड एंजॉय फ्री हेयर मसाज सेशन विद सिधायू हेयर ऑयल एंड सिधायू शैम्पू।

0: Back of the Hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: We hit Leica Radio.
2: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
3: और साउथ होल ट्रेवल का पैगाम आप सबके नाम भाई. साउथ होल ट्रेवल इज नोन फॉर इट्स कंपेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई. याद दिला रहे हैं, कॉन्टेक्ट साउथ होल ट्रेवल टुडे ऑन 0208574 8410. साउथ होल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड.

0: घोड़ा।
1: अरे भाई अरे भाई अरे भाई निकल के आ घर से।
2: घर से निकल के आए तो स्टूडियो पहुँचे, अब स्टूडियो से भी निकालोगे तो कहाँ जाएंगे।
0: देख ले फिर से
2: देख ले फिर से हमारे एक श्रोता भाई सवाल पूछ रहे हैं। अवतार जानना चाहते हैं, आपने गाना लगाया था ताकियो ताकि, ताकि का मतलब क्या होता है, फिर क्या रहा बाकी ताकियो ताकि?
0: कल जो था कल रहा होगा
2: भाई। ताकि पंजाबी में तो खिड़की को कहते हैं ना, विंडो होती ना विंडो, ताकि। और ताकि वो भी होता है जो किसी को आपने ताड़ा हो ना भाई, छुप छुप के वो जा रही सी की सड़क थे, मैं विंडो से खलोता सी का भाई, मैं भाई कहते ताकि ताकि से खलो के मैं फिर ओ ताकि उसको तकता रहा।
0: निकल के आ घर से।
2: और कोई मतलब होता हो तो भाई आप बता दीजिए, ताकि क्या मतलब है, ताकि ओ ताकि फिर क्या रह गया बाकी। किशोर कुमार की आवाज ले आई हमें यहाँ, जहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं पाउंड का रेट।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: And the rate they are giving is for £1 in Indian currency, they're giving 129.12 rupees. Pakistani 374.7 rupees. Bangladeshi Taki 166.81. Sri Lankan Rupee 443.88. And Afghani 88.06.
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
5: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Radio.
3: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
2: The gold is trading at the rate of 103.39 pounds per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
4: Leica Radio.
6: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
7: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
6: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
9: Dil ne ye kaha hai dil se bol chudiya.
6: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
11: The wait is finally over.
12: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
11: Mirzapur is coming to the big screen.
13: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat.
11: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
14: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
11: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
15: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.
16: Lester and Little Garba Stars, taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday, 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varashna kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957-477-330. Masti, music and a full-on Garba fun. Radio partner, Laika Radio.
3: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
17: Punjab's biggest tunes, non-stop.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी
1: From Dudley to Handforth Wood. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: ये गीत हमें लेकर के चलेगा 11 बजे की खबरों तक. खबरों के उस पार होगा आज का विचार. जुड़े रहिएगा हमारे साथ.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के इस दौर में। चिंतन से शुरू करते हैं हम सेकंड पार्ट ऑफ मनोरंजन। चिंतन यानी थॉट फॉर द डे, आज का विचार, जिसे स्पॉन्सर करके आप तक पहुंचा रहे हैं आर्य समाज लंदन। और उनका यह संदेश कि भाई विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए आर्य समाज लंदन आपको विश्व शांति महायज्ञ में आमंत्रित करते हैं। कहते हैं कि आइए वैदिक प्रार्थना, आध्यात्मिक चिंतन और एकता के इस विशेष पर्व पर पूरे परिवार और मित्रों के साथ सम्मिलित हो जाइए। नोट कीजिए, रविवार 13 सितंबर यानी परसों के दिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आर्य समाज लंदन, 69 आर्गाइल रोड, W13 0LY में ये यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप उन्हें फोन कर सकते हैं, नंबर है 02089911732। आइए अब आज का चिंतन सुनाते हैं आपको। भाई जैसा कि आप जानते हैं आज 9/11 11 सितंबर है और 11 सितंबर को 9/11 के रूप में लोग ज्यादा याद रखते हैं क्योंकि इतना बड़ा हादसा भुलाई नहीं भूलता। अमेरिका में ट्विन टावर्स का गिराया जाना और उसके बाद 3 हवाई जहाजों को हाईजैक करके किस तरह से तबाही मचाई गई थी, उस वक्त लगता था जैसे दुनिया की उस महाशक्ति को चुनौती देते हुए आतंकवादियों ने उसे घुटनों पर ला दिया है। लेकिन भाई इस विनाश लीला के साथ साथ कुछ पॉजिटिव तत्व भी उभर करके आए, जैसे लोगों ने मदद की, एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगा दी। वहां फायर ब्रिगेड वाले या सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो उस क्षेत्र में थे, उन्होंने जो काम किया वे अप्रिशिएशन भी डिजर्व करते हैं। कुछ लोग मौत के मुंह में जाते जाते बच गए। भाई वैसे तो 3000 से ज्यादा लोग मारे गए इस हादसे में। ऐसे बेकसूर, ऐसे मासूम लोग जो सिर्फ अपना काम कर रहे थे वहां, और काम टैलेंटेड काम, बहुत ही ऐसा कि इम्पोर्टेंट काम, ज्यादातर नौजवान। और मैं गया था वहां उसी साल हादसे के बाद, तो मैंने देखा कि जो नाम लिखे हुए थे वहां उन लोगों के जो इस हादसे का शिकार हुए, उनमें बहुत सारे हिंदुस्तानी भी थे, बहुत सारे मुसलमान भी थे उनमें। फिर क्या सोच के आतंकवादियों ने उसे निशाना बनाया, ट्विन टावर्स को गिराया, कितने लोगों को मौत के मुंह में पहुंचाया। कुछ एक ऐसी कहानियां हैं कि उस समय वर्ल्ड ट्रेड टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पहुंचने वाले लोग किसी कारण नहीं पहुंच पाए, किसी की मीटिंग पोस्टपोन हो गई, किसी के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स थी वो लेट हो गए, किसी का चश्मा ठीक कराने के लिए रुक जाना सामान्य बातें थी। लेकिन कुछ ही मिनटों में इतिहास बदल गया। भाई इस जानकारी आज के चिंतन में हम बता दें आपको कि जो संकेत दिया है कि भाई ये बातें प्रोग्राम में आज बताइए, नीरा भसीन जो है वो आर्य समाज लंदन से वो भी हमें याद दिला रही हैं, और भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश पहुंचे हैं कि इसकी जानकारी दीजिएगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई कुछ लोग भाग्यशाली थे जो बच गए, वो अभागे थे जो मौत का शिकार हुए। भाई क्यों उस दिन हजारों परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया। इस इंसिडेंट ने एक बात साबित की कि कुछ जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों से जिंदगी बदल जाती है। आइए उन सभी दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें, उनके परिवारों के लिए आज भी हम प्रार्थना करें। 25 बरस हो गए हैं घटना को, लेकिन आज भी जख्म हरे हैं, वो तकलीफ वो दर्द हम महसूस करते हैं। मुझे याद है उस दिन मैं उन दिनों भी रेडियो पर प्रोग्राम करता था और टेलीफोन लाइन से कॉल्स लिया करता था, लाइव कॉल्स। और शायद मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि टेलीफोन पर
इसी बात की चर्चा हो रही थी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ट्विन टावर्स का गिरा जाना कितनी बड़ी एक दुर्घटना थी, कितना बड़ा एक हादसा था जो क्रिएट किया गया प्रकृति की ओर से नहीं, खुद लोगों ने, इंसानों ने, नफरत भरे कुछ दिमागों ने। मैं टेलीफोन कॉल रेडियो पर लाइव ले रहा था तो लोग आते, अपना नाम बताते और अपना संदेश देते, दुख प्रकट करते, अफसोस जाहिर करते, बहुत बुरा हुआ। हर व्यक्ति यही कह रहा था, बहुत बुरा हुआ रवि जी, कितनी मासूम जाने गई। तभी एक डिफरेंट तरह का कॉलर आया, भाई सच्ची बात है। मैंने फोन लाइन पर उसे कहा, कहिए क्या कहना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ रवि जी सब ठीक करें, बुरा तो हुआ, मासूम लोगों की जान गई, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। मैंने कहा कौन सी बात? बोले आप ये देखिए, वो जो हाईजैकर्स थे कितने क्लेवर थे, कितने चतुर थे, और शायद वो ये भी कह रहा था कि वो कितने बहादुर थे कि उन्होंने सुपर पावर के घर में जाकर के उन्हीं से ट्रेनिंग ली, उन्हीं के हवाई जहाज लिए और फिर उन्हीं को तबाह कर दिया, ट्विन टावर्स को गिरा करके सुपर पावर के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। ये अंदाज था उस व्यक्ति के कहने का। मैंने कहा होल्ड ऑन, एक मिनट ठहरिए, आप इसे बहादुरी मानते हैं कि तो और नहीं, सुपर पावर के घर में घुस करके उन्होंने ऐसा किया। मैंने कहा विनाश कभी भी बहादुरी का प्रतीक नहीं होता, विकास होता है बहादुरी का काम, विनाश तो कोई भी किसी भी पागल से करवा लो। एक पागल के हाथ में पत्थर दो और उसे कहो कि वो जो सामने दुकान पर जो शीशा लगा इतना बड़ा जाके फोड़ दे, उसे कोई इंटेलिजेंसी नहीं चाहिए ये काम करने के लिए, इंटेलिजेंसी चाहिए उस शीशे को बनाने के लिए, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, विकास के लिए इंटेलिजेंसी चाहिए। डिस्ट्रक्शन तो कोई भी पागल कर सकता है जिसका ब्रेन वॉश किया जाए। बहन भाइयों, वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन उसके बाद जितनी भी कॉल्स आई वो उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज करने के लिए आई। ये कैसा दिमाग है, ये कैसी सोच है, ये कैसा विचार है, विनाश की प्रशंसा की जाए, तबाही मचाने वाली बात को आप अप्रिशिएट करेंगे? जिस दिन यह घटना घटी उस रात कई घरों में चूल्हा नहीं जला और कई घरों में कई कई रात तक रोना धोना जारी रहा। अपने बच्चे जो कैरियर बनाने वहां गए थे उनके घरों में कई दिनों तक दीपक नहीं जला। ऐसी काली रात जिसका कोई अंत नहीं था, कई परिवारों में ऐसी रात शुरू हो गई थी।

देश का बचपन भूखा हूँ, जिस देश का बचपन भूखा हो उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या

0: इंसान को कौन लड़ाता है, ये जंग अभी तक क्यों जारी है।
1: जंग अभी तक जारी,
0: लाशें जो खरीदा करता है, वो कौन ऐसा व्यापारी है

0: तन।
1: एक एक जान कीमती होती है। कई कहानियां ऐसी भी सामने आई, ऐसे प्रसंग। जेनली मैकमिलन नाम की एक महिला 11 सितंबर की सुबह न्यूयॉर्क के नॉर्थ टावर में काम कर रही थी। उसी साल 2001 में अचानक हमला हुआ, इमारत ढह गई और वो मलबे में फंस कर रह गई। चारों तरफ अंधेरा, मलबा, धुआं उठ रहा, सन्नाटा, स्मेल। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। आप यकीन करेंगे, 27 घंटे बाद बचाव कर्मियों ने उन्हें मलबे से जिंदा निकाल लिया। पर बहुत सारे लोग उनकी तरह से खुशकिस्मत नहीं थे। नॉर्थ टावर से बचाई गई अंतिम जीवित लोगों में से वो एक थी। लेकिन बहुत सारे लोग, 3000 से भी ज्यादा लोग, मौत के मुंह में समा गए। धरती अर्थी बन जाती है जब जब बारूद पिघलती है। आज का चिंतन, आज का विचार उस दुर्घटना को याद दिलाता है। आज के चिंतन के लिए हमें स्मरण कराया और संकेत भेजा नीरा भसीन ने आर्य समाज लंदन से। आपको बता दें कि चिंतन इस सप्ताह, पूरे सप्ताह स्पॉन्सर्ड था आर्य समाज लंदन की ओर से, और वो स्पॉन्सर करके एक संदेश आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं फिर दोहरा दूं कि 13 सितंबर यानी परसों रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आर्य समाज लंदन में विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। प्रार्थना है कि दुनिया में शांति स्थापित हो, जहां भी युद्ध चल रहे हैं वो रुक जाएं, लोगों में सद्भावना, भाईचारा, प्रेम जो है वो जन्म ले, फूले फले और पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो। आर्य समाज लंदन का एड्रेस मैं बता दूं, 69 आर्गाइल रोड, W13 0LY, वेस्ट ईलिंग में है। उनका फोन नंबर है 02089911732। याद रखिएगा, रविवार 13 सितंबर को ये आयोजन किया जा रहा है आर्य समाज लंदन में। आज का चिंतन, आज का विचार अब समेटते हैं, याद दिलाते हुए कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल होता है। चिंतन समाप्त होता है।
0: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके की ओर से याद दिलाया जा रहा है कि भाई रेट अच्छा चल रहा है, अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत में तो सही अवसर है। आज का रेट 128.9 रुपीज फॉर वन पाउंड, 128.90 रुपए का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: Tum Dera Saath Mera. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dera Saath Mera. Every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg $10.99.
5: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Sale Leicester LE5 4UN.
6: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place.
7: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11.
9: 11, 11.
3: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
11: The wait is finally over.
12: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
11: Mirzapur is coming to the big screen.
13: Gaddi na to virasat se milti na siyasat.
11: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
14: Abhi Kaleen bhaiya hai wo King of Mirzapur.
11: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
15: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
16: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
17: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.

आखिर में तुम्हें मेरा ही होना होगा। दरिंदा फिल्म का गीत मुकेश जी की आवाज में। भाई बैक टू बैक संगीत में दो गीत हमने सुनवा दिए आपको और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आए होंगे। पहला गीत तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए और भाई दिस वन आखिर को तुम्हें मेरा ही होना होगा। इसी बीच बहुत सारे संदेश आ गए हैं भाई, ज्यादातर लोगों ने तो चिंतन के बारे में लिखा है और चिंतन में वीरेंद्र चौधरी लिखते हैं ब्रिलियंट ट्रिब्यूट टू द 9/11 ट्रेजेडी विक्टिम्स। और राजीव पटेल कहते हैं कि मैं तो आपका ये कार्यक्रम सूरत और मुंबई के बीच यात्रा करते हुए सुन रहा हूं, गुजरात में सूरत से मुंबई जाते हुए। और राजीव पटेल कहते हैं कि अक्सर सुनता हूं जब यूके में होता हूं, लेकिन आजकल मैं भारत में हूं। तो भाई सुनते रहिएगा राजीव और औरों को भी सुनवाइएगा, थैंक यू वेरी मच। और सतवंत कौर जी कहती हैं थैंक यू वेरी मच फॉर चिंतन, वेरी सैड, इट मेक्स मी एंग्री एज वेल एज सैड सेम टाइम। ऑफ कोर्स भाई यही फीलिंग्स होती है लोगों की। भावना आपका भी संदेश मिला है। और सुनीता जी थैंक यू वेरी मच। निर्मला जी टोरंटो वाले उल्लास, रानी ऑफ स्लोव, रागिनी, सारा पटेल कहती है वेरी वेरी सैड एंड द सॉन्ग फॉलोड बाय चिंतन इज आल्सो वेरी अप्रोप्रिएट, थैंक यू सारा जी। और स्लोव में पमी सुन रहे हैं, थैंक यू कीर्ति, हमेशा की तरह आपका संदेश मुझे मिल गया है। और वत्सला जी नमस्कार प्रणाम हरिहर, द मोस्ट educated and so called clever have caused the most damage to the earth and humanity. बात भी सही है भाई, अगर धर्म का काम जोड़ना है, शांति स्थापित करना है, प्रेम और सद्भाव बढ़ाना है तो

0: धर्म के नाम पर ही बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं। अजीब विडंबना है। हिना जी थैंक यू वेरी मच। नैना शाह सो नाइस ऑफ यू। हंसा बोरा, दीपक परमार और अवतार असी, जस्मीन, भारत गंगाराम, भाई आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं, सराहते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं। थैंक यू। और साहब कुछ और बातें भी आपके साथ साझा करनी है, बहुत सारे संदेश जोड़ते हुए, बताते हुए, याद दिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। उनमें एक संदेश तो ये है, कहाँ है, खुल जा भाई, खुल जा सिम सिम, ना खुल, चलिए ठीक है, तो संदेश तो आते रहेंगे।
1: ये है लाइका रेडियो, फील गुड ट्रैक, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Leica Extra podcast update.
3: और लाइक एक्स्ट्रा पर हमारा न्यू एपिसोड भाई लोडेड हो चुका है. पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 33, टाइटल है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट रेजिंग डेट्स. भाई ये होस्टेड बाय खुश इस तरह के काम जो है बड़ी सफलतापूर्वक करती है. और फाइनेंशियल जगत में बहुत सारी जानकारी आपको चाहिए तो ये कुछ मिंस कंसेप्शन है, उनके बारे में क्लियरिटी आप जानना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा. खुश स्पीक्स टू मीनल सामरे, फाउंडर ऑफ सामरिया ग्लोबल फाइनेंस, टू ब्रेक डाउन मिथ्स अराउंड बिजनेस डेट्स. By Leica Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms. Don't forget to watch.
0: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
4: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
5: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: Pen in the function rakha hua hai.
7: South All Travel, 7 days a week. South All Travel, 24 hours a day.
8: South All Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: South All Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: South All Travel can take you there.
10: South All Travel, at all protected.
11: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
12: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
11: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
12: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
11: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
12: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
13: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
14: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन. फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956 154 846.
15: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
16: નવરાત્રી ની ધમાકેદાર રાતો માટે થઈ જાવ રેડી. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Leicester. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio Partner, Laika Radio.
0: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
17: Punjab, the biggest tunes.

0: Laika Radio Punjabi Laika Radio Mobile App te laikaradio.com te Alexa Play Laika Radio Punjabi Punjabi Laika Cool London ka number one Asian retro music station ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe Laika Radio Network
1: रफी साहब की सदाबहार आवाज। परिचय मांगना है किसी का, नाम पूछना है किसी का, तो अंदाज क्या होना चाहिए।

0: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: और भाई ये गीत सुनवाने से पहले ये तो आप समझ चुके हैं कि इस सप्ताह के कलाकार रहे मन्ना डे और संडे तक आप उनकी आवाज में इस टाइटल के तहत तो बहुत सारे गीत सुन पाएंगे। अब अगला गीत सुनवाने से पहले हम सोचते हैं किसके नाम करें। बहुत सारे लोग इस आवाज को इस अंदाज को पसंद करते हैं और भाई इसी बीच संदेश आया हमारे पास देशराज बैसन साहब का। क्या खूबसूरत लिखा है कि आज का सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन सुकून कहीं खो गया है। मोबाइल में सैकड़ों नंबर हैं पर एक भी ऐसा नहीं जिससे दिल की बात कही जा सके। चेहरे मुस्कुराते हैं पर आंखों में थकान छिपी होती है। हर कोई खुश दिखना चाहता है पर भीतर एक खालीपन है जिसे कोई नहीं समझता। सही कह रहे हैं आप, इसीलिए तो हम अपने आप को संगीत के साथ जोड़ करके वो पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच बैसन साहब। और साहब हमारी हेमलता सोलंकी जी, आपका संदेश मिला, चिंतन सुनकर बहुत सुकून मिला और वो यादें ताज़ा हो गई जो दर्द भरी यादें हैं। हाय रवि शर्मा जी, नाइस टू हियर योर प्रोग्राम, गॉड ब्लेस यू। ये कौन है? ये है ओ नीलम मुन्ना, कैसी हैं आप? ठीक ठीक, थैंक यू। और करसन पिंडोरिया जी, थैंक यू वेरी मच। भारती, आपका संदेश मिल गया। और दिनेश पोपट कहते हैं हमेशा चिंतन सुनता हूं। कुलवीर सिंह भी कहते हैं, पर दिनेश भाई कहते हैं कि सुनता ही नहीं हूं, रिकॉर्ड भी करता हूं। और चिंतन के साथ जुड़े गीत बड़े अप्रोप्रिएट होते हैं, बहुत पसंद आते हैं। अरे दिनेश पोपट जी, आपको जो चीज पसंद आती है वो ये है।

कुलबीर जी आपके नाम भी ये गीत, भाई ये ऐसे गीत बस यूं ही याद हो जाते थे, इन्हें याद करना नहीं पड़ता था, एक एक लाइन एक एक शब्द याद है।

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और साहब, कुछ सूचनाएं अलग से भी हमारे पास हैं जो साझा करना चाहते हैं हम आपके साथ. पर कई बार जो है, एक तो हम आपको बता चुके हैं कि हम भाई आने वाले समय में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें बहुत सारे में हम साझी हैं, उनके साथ साझीदार हैं. और एक ये कि भाई बिग बॉस का 20वां सीजन आ रहा है. बिग बॉस इज बैक, होस्टेड बाय सलमान खान. द शो airs every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. बस कर यार, ये बिसल क्यों आ रही है? हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई for the first time Jio Hotstar is streaming every episode along with a live 24/7 feed from the Big Boss 20 house. Jio Hotstar is now also available as an app on Sky TV. Got it? अच्छा, दूसरी सूचना क्या है? दूसरी सूचना वो सीधाइयों के विषय में, क्या भाई लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड टीम अप फॉर ए स्पेशल प्रमोशनल इवेंट फॉर सीधाइयों एट क्वालिटी फूड्स हेज एंड क्वालिटी फूड्स हाउंसलो. ज्वाइन रूबी रजा, काजल एंड सैंडी शाह दिस सैटरडे, कल 12 सितंबर को, एंड एंजॉय फ्री हेयर मसाज सेशन विद सिधायू हेयर ऑयल एंड सिधायू शैम्पू. तो साहब, ये सूचनाएं आपके साथ साझा करते हैं. ये भी बता दें कि एक्सप्लोर सिधायू टूथपेस्ट, एक्सपीरियंस द नेचुरल गुडनेस ऑफ सिधायू आयुर्वेदा सिधायू. भाई वैसे तो आयु आप जानते हैं ना, आयुर्वेद से निकली जड़ी बूटियों के विषय में जानकारी, वो जो दवाइयां बनती हैं भाई, जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बहुत असरदार जो है ट्रीटमेंट होता है. तो फ्रॉम द हाउस ऑफ बैद्यनाथ विद ओवर 100 ईयर्स ऑफ ट्रस्टेड आयुर्वेदिक लेगेसी, कम एंड ज्वाइन देम देयर. नोट कर लीजिए, कल शनिवार को सिधायू के भाई प्रोडक्ट्स और हमारे स्टाफ मेंबर्स होंगे वहां. क्वालिटी फूड्स हेज and quality foods Hounslow.
3: ये है
4: Laika Radio.
5: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
2: हम मिले तुम मिले, इस मिलन के पीछे कोई करामात होगी. पर क्यों मिले, इसके पीछे भी कोई ना कोई तो बात हो.

0: to you by Southall Travel.
1: और साउथ ऑल ट्रेवल का पैगाम आपके नाम भाई, दे से दैट दे हैव कॉम्पिटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई, तो फायदा उठाइए। कॉन्टेक्ट साउथ ऑल ट्रेवल टुडे ऑन 0208-574-8410। साउथ ऑल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Leica Radio.
2: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू। और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg sir 10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Sale Leicester LE54UN.
5: I have been happy Wali feeling like Diwali.
6: It's back and it's bigger.
7: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
6: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
7: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
6: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
9: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danube 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11,
10: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
12: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
13: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, protected.

0: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
0: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
0: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
0: in Dubai.
2: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
3: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. याद दिला दूं आपको भाई, एक बजे तक हमारा आपका साथ है. बहुत सारे लोगों के संदेश हैं सामने, पर आप जन्मदिन मनाने वालों के नाम ये गीत कर दें.

तेरा बदलेगा मुकद्दर फकीरों से ही मिलकर। कुछ लोग इस बात पर बड़ा दृढ़ विश्वास रखते हैं भाई। आजकल एक फिल्म आई हुई है, कहते हैं नीम करोली बाबा जी के जीवन पर आधारित है वो, हनुमान अंश।

0: भाई आज 11 सितंबर को नीम करोली बाबा जी की पुण्यतिथि है। 1973 में वो ब्रह्मलीन हुए थे, आज ही के दिन शरीर त्यागा था उन्होंने। चर्चा आज भी है, फिल्म बनी है उन पर और बड़ी कामयाब फिल्म जा रही है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम, उनकी भी पुण्यतिथि आज है। महादेवी वर्मा जी।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: आज 11 सितंबर को भाई वो ट्विन टावर्स जो है गिराए गए थे और टेररिस्ट अटैक हुआ था अमेरिका में बहुत बड़ा, उसकी तो तिथि है ही। लेकिन आज कई लोगों के जन्मदिन भी हैं और उनमें एक बहुत बड़ा नाम है मोहन भागवत जी का, आरएसएस चीफ और ये एक्टिविस्ट हैं। मोहन भागवत जी अभी लंदन में थे और पता लगा था कि भाई उनके कार्यक्रम भी थे, लेकिन अमेरिका में भी उनका एक प्रोग्राम था। बहुत ही तगड़े, क्या कहते हैं भाई, हिंदुत्ववादी नेता हैं। और मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है, 11 सितंबर 1950 में जन्मे थे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू सर। आज ही के दिन जन्मे थे विनोबा भावे, गांधी जी के एक परम भक्त भाई, परम परिपक्व अनुयायी और नॉन वायलेंस के वो बहुत बड़े एडवोकेट थे, ह्यूमन राइट्स के भी पक्षधर थे। विनोबा भावे जी आज ही के दिन 1895 में जन्मे थे। और इनके अलावा भाई आज जन्मदिन मनाने वालों में लाला अमरनाथ का नाम सुना है? अरे लाला अमरनाथ भाई, सुरेंद्र अमरनाथ और महेंद्र अमरनाथ और राजेंद्र अमरनाथ, इनके पिता श्री, ये सारे क्रिकेटर्स हुए हैं सारे अमरनाथ, लेकिन लाला अमरनाथ इनके पिता थे और भाई बहुत बड़े क्रिकेटर थे। कपूरथला में 1911 में 1911 में उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। और आज ही के दिन और किसका जन्म हुआ भाई, वल मुरली कार्तिक, ये भी क्रिकेटर हैं, इनका भी आज ही के दिन 1976 में चेन्नई में जन्म हुआ था। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भाई आज आपके घर परिवार में भी किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भाई दिवे क्रिकेट की बात हुई तो स्कोर बता दूं आपको, पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 146 रन बना लिए हैं और उनके 3 खिलाड़ी अभी आउट हुए हैं। तो ये भी बता दूं पहली इनिंग में उनकी पूरी टीम 133 रन पर सिमट गई थी। तो इंग्लैंड के 453 रन बहुत भारी पड़े थे पहली इनिंग के, और अभी भी पाकिस्तान की टीम 174 रन पीछे है दूसरी इनिंग में खेलते हुए भी। तो ये है स्थिति। आज खेल का तीसरा दिन है, कौन सा दिन है, हाँ, तो कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा, सुनते रहिएगा, स्कोर के आंकड़े हम आप तक पहुँचा।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा। Like a radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: करेंसी रेट्स भाई क्या दे रहे हैं LemFi वाले, नोट कीजिए। एक पाउंड के बदले इन इंडियन करेंसी दे आर गिविंग 129.05 रुपीस, पाकिस्तानी करेंसी में 374.51 रुपीस, बांग्लादेशी टके दे रहे हैं 166.65, श्रीलंकन रुपए पाउंड के बदले, एक पाउंड के बदले श्रीलंकन रुपीस 443.95 और अफगान अफगानी 88.37।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: Well, the gold is in... ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 103.14 पाउंड्स पर ग्राम।
1: ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, वाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइंस एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116

राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम। गीत गाता चल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और भानु भाई, वो अभी घड़ी पर नजर गई तो पता चला कि अपनी घड़ी गुजर गई। स्टूडियो खाली करने का वक्त हो गया है। जाने से पहले याद दिला दो भाई, हमारी आपकी अगली मुलाकात सोमवार को होगी। और उससे पहले हाँ, एक बड़ा मीठा सा निमंत्रण आया है प्रशांत जी की ओर से। कहते हैं कि नंदोत्सव मना रहे हैं आप और आप राधा कृष्ण का ये गीत सुनवा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हम आपको इनवाइट करते हैं। जन्माष्टमी का त्योहार चला गया लेकिन नंदोत्सव अभी तक चल रहा है, तो कहते हैं कल हाउंसलो मंदिर में आप आइएगा और हमारे साथ मिल करके नंद उत्सव मनाइएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। और पवन शर्मा कहते हैं हमारे यहाँ बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी भाई वेलकम कहते हैं उनको यूके में। बात यह है कि समय का अभाव है भाई, वरना कोई गीत आप सबके लिए लगा देते अप्रोप्रिएट। परंतु अब एक वादा, एक इरादा कि फिर से जन्म ही क्यों ना लेना पड़े मुझे, जरूर आऊंगा मिलने को, वादा है आपसे। और पलड़ा हमारे इश्क का भारी रहा सदा, अब क्या करें प्यार कुछ ज्यादा है आपसे। दिल तो नहीं करता भाई इतनी खूबसूरत महफिल छोड़कर जाने के लिए, पर जाना होगा क्योंकि मंडे को लौट कर आना होगा। हैव ए सुपर्ब वीकेंड, बाय बाय।

प्यार से। कैफी आजमी ने ये प्यारा गाना लिखा, बप्पी लहरी जी ने संगीत दिया। इस फिल्म के हीरो थे शेखर कपूर विद शबाना आजमी। फिल्म टूटे खिलौने 1978 की फिल्म। What a beautiful evergreen song. I've always sung it on stage and enjoyed it. Yasudas. Next song, Remembering Kaiser Fakir, especially for Omar of Dubai.

सबकी फेवरेट फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई इतनी फेवरेट है तो नेक्स्ट गाना भी मैं डेडिकेट करता हूँ आप सबको, शंकर जयकिशन का संगीत।

I would call it a very clever composition, कांच की गुड़िया का. जो संगीत दिया था वो थे सुहरीद कर, और इनका म्यूजिक एकदम अलग होता है. शैलेंद्र ने लिखी लिरिक्स. दिस इज फॉर रमा पटेल एंड हर सिस्टर. नेक्स्ट वन फॉर फरीदा गुलाम अली. वो थे मुकेश जी और आशा भोसले. ये है मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर. Why I'm playing this song is for Farida Ghulam Ali, because she used to go to a nightclub when she was little, and she's a modern girl.

0: दिस इज हिमांशु's वाइफ बीरा कॉलिंग हिम आजा मेरे प्यार आजा. एंड हियर इन द नेक्स्ट सॉन्ग हिमांशु द बर्थडे बॉय मेक्स हिज एंट्री सिंगिंग दिस पर्टिकुलर सॉन्ग ऑफ मुकेश.
1: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स.
0: एंटर हिमांशु, डॉक्टर हिमांशु, बर्थडे बॉय.

0: like a radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
3: गेट रेडी क्रिकेट फैंस, द T20 बैटल इज ऑन. टीम इंडिया टेक्स ऑन अफगानिस्तान इन 3 एक्सप्लोसिव T20 इंटरनेशनल्स फ्रॉम 13th टू 17th सितंबर. बिग सिक्सेस, flying stumps and edge of the seat action live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now. Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: From Southall streets to the London rain, from the tube to your sofa again. UK, the big bang of entertainment, Jio Hotstar is here. Blockbuster movies, the latest shows, best of reality shows, and stars you know. From stories that thrill to moments that delight, there's something new to watch every night. So get ready. Jio Hotstar is now live in the UK.
5: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.

0: Greater Manchester, Bradford, Leeds. We are getting bigger. Leica Radio.
1: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागिन।

0: Firecracker. One performer.
1: Countless personalities.
0: A whole universe of entertainment.
1: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
0: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
1: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
3: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
2: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
3: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
2: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
5: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर Travel Mantra.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
7: Punjab, the biggest tunes.

0: सा प्यार।
1: हाय, और कितना प्यार करवाओगे? जाऊंगी नहीं तो वापस आऊंगी भी कैसे, लेकिन अभी वक्त है यारो, अभी कहीं नहीं जा रही हूँ। लेकिन हाँ, दिन ढल गया है और जाने का वक्त आ रहा है, लेकिन उससे पहले Let's get on the feel good track of the hour. Gurdas Paji ki awaaz ke saath, turn up the volume high because you're going to love this one.
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender.

0: Get your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे Grand.
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
3: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
7: फोन 02085748410
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
8: बिग बॉस में इस बार मिलेगा बरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान दरखास्तों में जान
9: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: Leica Radio.
0: The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.

0: 9 सरप्लस अब है स्टॉपलॉस।
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
2: The sounds of love across the Midlands. This is Laika Radio.

0: Radio. We're finally going home for the wedding.
1: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
2: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
1: That's why I'm using Simsy. Data in 220-plus destinations with 4G and 5G where available.
2: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
1: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
2: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
3: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simsy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simsy.com. Terms apply.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
5: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
6: Big Boss में इस बार मिलेगा वरदान और extra जीवन दान तब हंस तो मेरी जान.
5: Big Boss Season 20 every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house exclusively on Jio Hotstar.
3: From Helsowen to Harborne. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. The greatest Asian love songs across the Leica Radio Network.